घर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौ गुजराती कार्यक्रम गीत माला। अच्छा, बेटफरती समाचार आया छे के हाँ तमे जरा लेट थे गया लॉग इन करवामां, एटले तमने साचो जवाब न तो ना आपी सका। हाँ, ओखाणानो पेलो ओखाणो। श्रोता मित्रों, हूँ तमने बीजो ओखाणो आजनो आपी दऊ, शांति थी सांभळजो है ने। एक जनावर एवं भोजन धोई ने खाए, एक जनावर एवं छे जे भोजन धोई ने खाए, एनु कोई नाम कहो क्यू जानवर थाय। एक जानवर एवं भोजन धोई खाए, धोई ने खाए। हाँ अच्छा, मने ये ने थी खबर। हाँ, एक जानवर एवं भोजन धोई खाए, एनु कोई नाम कहो क्यू जानवर थाय। व्हाट्सअप करो 0756686863। तमे संभळो अने बीजाने संभळाओ गीतमाला। हाँ श्रोता मित्रों, आपने पण जणाई दो के लगभग 7:30 पछी बे चार गीतो कंटीन्यूअस आपणे सांभळशो, के सुमन कल्याणपुरनो जे निधन थई गया, तेवो देव थई गया छे। पण तेमना जे गुजराती गीतो हता ने કમાલના હતા, અને મેં થોડું કમ્પાઇલ કરીને રાખેલું છે, તો મને આશા છે કે આપણે તે પણ સાંભળશું 7:30 પછી। આપ સાંભળ્યા છો ગીતમાળા 102.8 FM ઉપર, યા તો www.diversefm.com ઉપર। તમે સાંભળો અને બીજાને સંભળાવો। આપની કોઈ ફરમાશ હોય તો વોટ્સઅપ કરતા જાઓ અને હું ત્યાં ક્યુમાં મૂકતો જઈશ।

0: तो तने वात कहूं खानगी।
1: ए ए जूनागढ़ ना सीताफळ ए मारा धोड़का ना दाढ़म।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 एफएम पर या तो www.typhusfm.com पर। आज नो त्रिजो अतपट वखाणो आ प्रमाणे छे। बधा प्राणी ना शरीर पर वाळ नो एक पड होय छे। एवु कयु जानवर छे जेना शरीरे वाळ ना बे पड होय छे? आछा, बीजो पण जवाब आवी गयो छे। ए पण लिस्ट बंधी आवेलो छे। हेजोग। अरे रे रे रे।